सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Jetty.

está aquí, Shakti. Que se me percargue.

sabe cego. Sede. Just understand.

mess up me. Fire Mandalo. Guess up.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

बच्चों।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस start

सोचो हाथ को ऊपर करना है, टाइम लगेगा, कर सकते हो ना। अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना, करो नहीं, लेकिन कर सकते हो। ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जाए।

0: замечай. И как роде, отча роде, хальчал мене яе, иске упар, और अटेंशन.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Bonita.

Roots.

0: enciendo. Vani aur karam to automatically theek ho jayenge. To baap dada aaj man
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
2: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

के संस्कार के है और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से है जिसको आज आप मेरा कहती हो वो मेरा है जाते हैं ना कभी तो ये रावण की चीज आप

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Isso mesmo.

Tranquilo.

Elken Bob. फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल पर माया से।

0: बेहोश कर दे और बाप होश में लाते कि तुम मेरे हो। मेरा बाबा कहाँ चला गया? तो बंद आंख याद के जादू से खोल देते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हिम्मत नहीं छोड़ना, एक कदम आपके हिम्मत का और हजार कदम बाप के मदद का है। अनुभव करके देखना, हिम्मत नहीं हारना, दिल शिकस्त नहीं होना। सर्वशक्तिवान के बच्चे दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, सफल
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

气氛。

Feel free.

जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति सूर्य की किरणाएं अपना कार्य से कर रहा है। पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी, दिन से

शांति से नहीं छुड़ा सकते, ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलो, सकाश फैलो, जैसे इस

sit up.

0: जाओ, जब तक जाओ तब तक मन को एकाग्र कर सको।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: इस सीजन में बाप दादा टीचर्स को विशेष उठाने चाहते, सब टीचर्स दिल्ली वालों का पीछे देखो कितने टीचर्स चौथा हाल तो टीचर्स है।
3: 2000 टीचर्स आई है। 21,000 भाई बहने आई है, 2000 टीचर्स आई।
2: खुश होते हैं।

Say it.

0: parte quieta. Cardiana.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना पाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से अटेंशन से और पाप के लिए है या परम आत्मा के लिए है।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होके दिल तो भर जाती है ना, उनसे खाली तो नहीं रहती ना, तो दिल खाली नहीं तो दिल आराम कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठने की जगह तो कि नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर कोई दिन अंदर में समझे, हाथ उठाने में शर्म आवे, तो भी अगर कोई विघ्न है या कोई अड़चन है, तो अपने दादियों को या जिसमें भी आपका फेथ हो, बड़े दादी या दादियों में, उनको सुना देना, रखना नहीं अंदर, कोई ना कोई इलाज ले लेना। क्यों होना है तो अचानक होगा, उस समय पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। अभी चेक करो, कुछ भी अचानक हो जाए, हलचल हो जाए, तो इतनी शक्ति है जो स्वयं को बचाए, वायुमंडल में ये प्रभाव डाले और रोके भी मदद।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

chico, pap dada, ats, tivar por xe.

0: इसी टाइटल को सदा याद रखना। कोई पूछे आप कौन है तो यही कहना, दीवार पूछा रहती हूँ। ठीक है, सभी को मंजूर है, मंजूर है। अभी ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, समय आगे भाग रहा है, इसीलिए अभी तीव्र पुरुषार्थ बढ़ना ही है। समय की पुकार तीव्र पुरुषार्थ
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी, क्यों के ड्रामा में समस्याएं भी आती है और सफलता भी होती। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय होती है वो समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता, क्योंकि निश्चय अर्थात विजय तो किसके ऊपर विजय बनता। परिवर्तन करने में एक सेकंड में समस्या परिवर्तन हो समाधान रूप बन जाती, हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अटोल अचल बन जाते। ये निश्चय रहता है कि मैं कल पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बनाता बने हो, और पर कलप के बाद भी मैं बनूंगी, तो ये नशा ड्रामा का निश्चय पक्का कराता। फकुर रहता नशा रहता जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते, तो बुरे में नहीं हुआ, ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ, समझे? बचाओ समय को, संकल्प को, जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कलंब उसी परमान राज भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। लेकिन एक अटेंशन रखना, ये अगर मानो आपका आज का दिन जमा खाता बहुत कम हुआ, तो कम देख करके दिल शिकस्त हो जाएंगे ना। ओके, दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करें। अपने को उमंग उत्साह मिलाओ, अपने आप से रेस करो दूसरे से, अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटे जमा हुए तो कल 10 घंटे। दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी समय है जमा का, अभी टूलेट का बोल नहीं लगा, फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है ना, तो अच्छे पूछा रहती है क्या करते हैं, दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते। तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना, और ही उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता भराना है, समझा? दिल शिकस्त तो नहीं होंगे, फिर बाबू को मेहनत करनी पड़ेगी। पत्र लिखने शुरू कर देंगे, बाबा ऐसा हूं।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

ये आवाज सुनाई नहीं देता, लेकिन पापा को सभी का

0: сюда бабочек. Бабки ты мира бача, арбачаки ты мира баба. Китна мита баз. Бас мира жо उसकी कमाल हर एक की दिल कह रही है मेरा बाबा बाप की दिल हर एक बच्चे प्रित कह रही है मेरा बच्चा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा भी देखते हैं कि सने बाप दादा से सब कहे, लेकिन सने के साथ शक्ति भी चाहिए। इसके लिए अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं, लेकिन जो बैठने के वायुमंडल शक्तिशाली चाहिए, कोई कैसे बैठता है कोई कैसे में। अगर आप फोटो निकालो ना तो आपको खुद लगेगा कि और कुछ होना चाहिए। बाप दादा ने ज्वालामुखी योग का उसके ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना, शरद करते हैं सभी, लेकिन पुरशारत के आगे तीव्र शब्द छोड़ो। अभी बाप दादा हर बच्चे को ये दो मास दिए, इसमें जितना अटेंशन देंगे टेंशन के साथ बाप दादा भी एक्स

0: मन के मालिक, जिस मन को ऐसे चलाओ जैसे पांव और बांह को चलाते हो, जो चाहते हो वो करते हैं ना। अभी आप जाओ, यहाँ नहीं, यहाँ रखो, रख सकते हो ना। ऐसे माइंड कंट्रोल, जो चाहे वही मन संकल्प करे। रोज रात को रिजल्ट देखो, आज मन के रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक रही। अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए, तब समृद्ध बन वायुमंडल में समृद्ध पन की शक्ति फैलाओ। बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुन करके बच्चों द्वारा अभी जल्दी समापत्ति कराने चाहते। सुनाया ना, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐड करो दीवार। करना ही है, करेंगे देखेंगे, ये के नहीं चलेंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी सभी बच्चों

Sí.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समझाने के लक्ष्य से और कोई लक्ष्य

ऐसे समय में

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इसलिए वैसे तो आप जानते हैं क्या रिजल्ट

0: सोचो कि परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। अच्छा, अभी सुबान से भी किया किया तो सही ना। तो ऐसे प्रॉमिस करके फिर भी नहीं करने का तो लाइन में आ जाएगी ना। तो जब भी कोई ऐसे हो उस समय
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बच्चे में ये परिवर्तन देखने जाते हो सकता है, हो सकता है। हाथ उठाओ, हाथ उठाने में तो ठीक। तो क्या करना? अच्छे बाप दादा मुबारक देते हैं, एक दो को अटेंशन दिलाते रहना। क्या करना? रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मेल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वो पोता मेल देके और अपने पोती को खाली करके गुड नाइट करना। बाप से भी और बाप के याद में आप भी सो जाना। आपकी नींद बहुत अच्छी हो। पहले खाली करना अपने को, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना। तो आपको बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया तो धर्म राजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाएंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संबंध प्यारा है वो भी देख।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा, अमृत वेले मेजॉरिटी is

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जिसको भी जो देखे ना, ऐसे लगे ये कौन मेरे सामने आ गए। देख देख के खुश होता नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: एक सेकंड में मन के मालिक बन, मन को अरर कर सकते।

So.

samé mi. Voll Beinsleser ging.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: हर एक वर्गीकरण से ऐसे कोई स्पीकर तैयार हो, आप टॉपिक देते हो, उस पर भाषण करते हैं, नहीं मुझे ये करना है, ऐसा कुछ प्लान बनाओ। उसका आधार है स्वयं ने

टेस्ट को खत्म कर पेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैले, फेस्ट सेवा की सिद्धि प्राप्त हो

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा अगर बच्चे को दीवार पुरशारती be

del Quito a Elena. Rosa Bradwelle. Apaneco. Papuitoae. Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: हम बदल जाएंगे, लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों की बहुत काल का पुरुषार्थ उनको एडिशन मार्स दिला के भी पांचवित आनर कर लेती है। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ, समझा? ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं, देख लिया देख लिया। हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं, लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना। रेस करो अच्छाई की, बुराई की रीस नहीं करो, धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय है, अटूट अचल। एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है, इसलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। मन को सुनने के बजाय अंतर्मुखी रखो, समझा?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: चाहिए, हर एक विंग को सिर्फ प्रोग्राम नहीं प्रोग्रेस भी उन्हों की करानी चाहिए। नस्ती खाते जाए
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: शिव के ऊपर अक के फूले चढ़ते, तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे हो, तो ये क्रोध का अक का फूल निश्चय बोती हो।

Hati-hati.

0: हिम्मत कभी नहीं हार। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, पढ़ते रहना। बाप दादा कंबाइंड है कहते हो ना, साथ है नहीं कहते हो, कंबाइंड। ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो, बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके फिर अर्पण कर दो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि सभी बच्चे नंबर वन हो। दी हुई चीज अमानत हो गई। हाथ उठाया अर्थात दिया तो अभी आपका नहीं हुआ, अमानत है। तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में ख्यानत है, ये बुरा माना जाता है। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि मेरी नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: देखो कर बैठे भी बाप दादा की याद प्यार, एक दिन भी मिस नहीं होता। अगर रोज विधि पूर्वक
3: पुरानी भी है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पवित्र आत्मा को तीन विशेष वरदान मिलते हैं, एक स्वयं

0: Yo sé, chis.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्रह्म जीवन की मोक्ष सदा केयरफुल और केयरफुल मोक्ष बदलना नहीं चाहिए। रूप में कहते हैं आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? करना सेवा या परिवार से किनारा है और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है, मूड नहीं बदले करो, कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले के कारण में आने वाले निवारण करने वाले ठीक कर क्या लिया है? कंट्रेस्टर होना कंट्रस्ट लिया है कि प्रकृति के मूड भी चेंज करे। प्रकृति को भी चेंज करता है ना, तो प्रकृति परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। मूड चेंज होती है कि नहीं? होती है, कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाके बैठते, ज्ञान सागर नहीं स्थूल सागर। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना, करते हैं। या कहेंगे आज पता नहीं, अकेला अकेला लगता है, तो पाप कहा कंबाइंड रूम कहा गया, अलग कर दिया। कंबाइंड से अकेले हो गए, ये प्यार इसको प्यार कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार का मूड, एक होता है मूड ऑफ, वो बड़ी बात, लेकिन मूड परिवर्तन होना ये भी ठीक। मूड ऑफ वाले बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा दिखता है, परों को बहुत खेल दिखाते हैं, या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। ऐसा खेलने करो, क्यों? क्यों बाप दादा का बच्चों से सभी से प्यार? बाप दादा ये नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त है वो बाप समान बन जाए और बाकी बने या नहीं बने। नहीं, सबको समा बनाता ही है। यही बाप दादा का प्यार।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अच्छा भी रोने डर लिया थे, एक सेकंड में
4: सकाश

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी बाप दादा ने देखा कि समय अनुसार जितना सेवा का उपागोत्सा अभी प्रैक्टिकल में है इतना ही अभी दीवार पुरुषार्थ थी बनना और बनाना संपन्न बनना और बनाना

इस पॉइंट के ऊपर भी वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की

जैसे एक दो में सेवा का उमंग वायुमंडल में फैलाया, ऐसे अभी बाप दादा यही बच्चों में शुभ आशा रखते हैं कि ये लहर वायुमंडल में फैले।

0: शरद है, दीवार पर शरद करना है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

पण सावाचा गरम किसी में भी